स्कूलों को खनान चोर खाने में तैयार था खान सा खाखलुखील ते कुखलाल खाओच ऐशा चिमान खाओच ऐशा उखलाल एगुलां के शतात आलेश नी के कीट नी के काले खाते आज खुन्शुं खाने